0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा।

0: पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवानी ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब

0: डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047

0: विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

0: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही

0: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅಭಿಮತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 6:40
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी. आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा.
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था. हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था. जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं. ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई.
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल विश्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ी, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें.

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है।

0: मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें।

0: 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका?
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे। और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखी हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुनिए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में, और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जब वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी, और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि पहली महिला गायिका, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही, और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो, पहली चार,
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, तो यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबा

0: हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी
1: और वो
0: श्रेणी की कलाकार थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
1: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व उन्होंने फिर संभाल लिया।
0: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजी बॉर्डर और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे, जो और भी बहुत सारी हैं।
1: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताया भी कि प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं वो इस बारे में भी जानते होंगे।
0: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
1: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते बाजार जाते वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां पे शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसकी जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती है जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल, कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंस कर हम गलत चीज।
1: और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता,

0: तो इस तरीके की फ्रॉड काफी होते हैं।
1: रंग की तो जब आपने बात कही तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपकी फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना। हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
0: और लेकिन ये चंचल जी हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है।
1: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
0: बिल्कुल। एक महेश होता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
1: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद ली जाती है चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से सबसे बड़ा पछतावा भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छी तरह देखभाल करके ही खरीदे, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसी ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है, यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखो कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया, तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाले स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पति है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो कभी पछतावा हुआ।
0: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया। ऐन समय पर फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े, तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदे, यही बेहतर होगा कि उनको 2 बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, इनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ है तो वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं,
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है उसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
2: जी।
3: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए वेद भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है
3: जल्दी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
3: है, तो
2: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश में पढ़कर सुना रहे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल,
2: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
3: बहुत जरूरी
2: है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो
3: तो है।

0: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि चाय की बूंद भी गई है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रही हूँ, तो इसमें चावल के बारे में बता रही है। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदी नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर, पालक, इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: क्या बात है। और एक हमारे श्रोता है जो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है, उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं ऐसा कुछ
0: नहीं, नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें। और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें। और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है अरबी।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: तो आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं थाने महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, कॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा।
1: हाँ हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: एक कुंडो मालिक का है, तुझे सूरज कहो या चंदा,
0: तुझे दीप कहो या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतरावी, तहसील पकड़िया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपना।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो 4-5 बाग देखे, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं, गाँव में तो बहुत है लेकिन हम खेत पे लगाए हैं 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं, पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गांव, यानी खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गांव में ही मौजूद है, और आप तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी के सामान बेचता हूँ, जैसे दीपावली पेट पेट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ के झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं, उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है, चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है, और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है? शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर पे। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे, लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी सीखने के लिए, तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाल
1: रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते ही थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 वॉल 3 वॉल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब, तो सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
1: दिक्कत होती थी, इधर से उधर तक नहीं लगता था।

0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाटी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और उससे उससे सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम समा मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक एकदम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी तो अभी फिर वैसे बारिश होने लगी, चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। आप सुनाओ मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें रखो इतना साल हो गया।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लिखा हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका

0: घर में मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है।
1: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
0: गुरदास मान जी का गीत है बहके वेख।
1: वो
0: बहके वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बहके वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलूंगी।
1: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मक्खन घी दही सब कुछ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
0: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है।
0: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, हम खा लेते हैं तो जो उसका जो तना होता है वो पशु चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: गीत मैंने वो सुना दी है, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकीजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: देखी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है और कल तो मौसम बहुत ही अच्छा।

0: है, सुहाना है मौसम है।
1: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
0: बिल्कुल बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो कश्म का काम, मजा आता है इसमें, ये जो दिन भर ऑन होता है बहुत ही अच्छा लगता है।
1: पश्मीने का काम?
0: जी बिल्कुल
1: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
0: जी जी,
1: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
0: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
1: जी जी,
0: तो मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
1: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
0: ऊन का होता है, उसमें फिर हम धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा मतलब उसमें
1: जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
0: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
1: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: सहेली फिल्म है, इसी में गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
1: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
0: थोड़ा बहुत गाते हैं।
1: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे आप गुनगुनाएंगे तो।
0: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
1: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज धूप मारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया।

0: सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, तो मौसम ठीक है आज।
1: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
1: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
0: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
0: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है, तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
1: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
0: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं, क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
1: क्या काम काज है वैसे आपका?
0: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
1: तो साथ में रेडियो चलता रहता
0: अपना। हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है। और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ, यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, उन्हें आपने बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन हाँ, हाँ, अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे,
0: तो उन्हें नहीं पता।

0: ना कि हमें कब बोलना है कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा।
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसको जब आप दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है। नहीं,
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाच
1: बड़ा सुंदर। बिल्कुल, मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरे है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। अच्छा। और जैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरे, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल आती है, तो चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं?
1: ममता जी, बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया, तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है, और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की जैन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो कॉर्पोरेशन में बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए, मैं अपनी बेटी को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम नहीं, देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे
1: हैं? हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है? आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और उनकी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करते हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की झारखंड की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गाँव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान
1: पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर

0: and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोपड़ी, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली बंबई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने साइबर सुरक्षा डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस

0: ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह

0: बहुत ही अनूठा है, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोप वे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं कि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सके, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सके। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इंप्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खासतौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes North

0: East as both a national asset as well as a gateway to external markets, and it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं.
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में. माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे. और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था. पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है. साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है. अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है. हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है. हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में. तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है. तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी.
1: थैंक यू सो मच सर.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
3: दिस इज आकाशवाणी. इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII. इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट.
4: नमस्कार. मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स. ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी. We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID, external environment is very volatile, there's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. It's less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ, ಸಮಯ 11:05:42. ನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿಲಯದ